0: कोलगेट मैक्स फ्रेश, मिंत्रा भगाओ, ताजगी जगाओ।
1: टीएनटी एक्सप्रेस अर्जेंट डकुमेंट पासपोर्ट पार्सल एवं जुनसुकै सामान विश्व को कुनै पनि देश में पठाउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्।
2: 21औं शताब्दी को आवश्यकता एकमात्र भरपर्दो छिटो छरितो र सुलभ माध्यम टीएनटी अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सर्भिस।
1: टीएनटी एक्सप्रेस न्यू रोड पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका।
0: कोलगेट मैक्स फ्रेश, मिन्त्रा भगाओ, ताजगी जगाओ।
1: TNT Express. Urgent document.

0: मम्मी गर्मी भाई के सो पिऊ ना
1: पिऊ ना लाई चिसो उठाओ हटे
2: हले गर्मी मनाया से
1: रिफ्रेशमेंट पा न्यूट्रिशन मी
2: चिसो हले।

0: ఫోన్ పాయింట్ సంగ సదై రివార్డెడ్.
1: यो वर्ल्ड कप नहीं करो सेलिब्रेट मिली सब जेनरेशन हिमस्टार टीवी खरीद करना पाउनुहोस् 32% सम्म को क्याशबैक वर्ल्ड कप 2026 को टीवी सीजन पास र एक वर्ष को नेट टीवी पैक शर्तहरू लागू हुने छन् हिमस्टार टीवी उही सेलिब्रेशन हरेक जेनरेशन
2: हिमस्टार for a complete home.

0: বাদসালিয়া পোখারা ক্লিনিক, নিউ রোড পোখারা, ফার্টিলিটি হোপ লাইন 01-597-0611।
1: मम्मी गर्मी भाई के चीसो प्यूना
2: प्यूना लाई चीसो उठाओ हॉर्ने
1: हॉर्ने
3: गर्मी मनाया ट्विस्ट
2: रिफ्रेशमेंट बार न्यूट्रिशन मिक्स
3: चीसो हॉर्ने।

0: का पैकेज को बाहर स्ट्रीमिंग गेमिंग काम होस या रमाइलो जहाँ सुके जाओ कनेक्शन में कुने गड़बड़ी छैन ढिलो पोखरा इंटरनेट सधैं तपाईको साथमा हिजो आज भोलि हामी छौ तपाईको बाटोमा छिटो भरपर्दो सुलभ र सहज पोखरा इन्टरनेट तपाईको पहिलो रोजाई
1: ओहो नासर बे कति छाबा डिजाइन बे मारेगा ना किन नि खनि तोला
2: खनै दिवा नासर बे रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान महेन्द्र पुलारी तोला
1: ए नै छाबा मार दोकान पो मोना नै प्रेसलाई नि च्यारबा चुरा रैया औठी हमेला झोका टस सिग्री हार तान चनै छतो हो नि सगा मात्र आङी खैमा खैमा समस्या पर्दिर मार चुवल तुई बिस्यानरी बेल्ले छाबा कोपिम ओछे
2: हजुर किमे झोको लाइनि छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना चैदी म बिसा वा चुवल तुई बिसा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खोऊ चु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट नलो धिताई पालिखे चोकै यावै क्यार मोहै
1: जग मात्र आङी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घिस शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: समुदाय रवा ता क्रिबा जाल जाति क्रिबा छतैरा न त खैमा बिलन चन्न यामो
1: तोय निल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्रपुल पोखरा सम्पर्क 061-5808-15 98-5-60-35-8-15 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
2: छतैरा त तान निभिम्द
3: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाकोट।

रॉयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप नेपाल नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ने गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।

0: major appliances ka AC, cooler, fridge, cooker, induction, air fryer lagayat anya gharelu saman haru ghar lyaera ta hernus. Tapai pani bhanu hunecha. Malai ta major ko bani lagisakeko cha. Major appliances, major ko bani lagcha.
1: तपाईं यसपछि समाचारमूलक प्रस्तुति अन्नपूर्ण हाइलाइट्स सुन्न सक्नुहुनेछ।
2: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
3: टाइम चेक।
4: यति बेला साँझको छ बजेको छ।
5: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाको ज्योति सुनचाँदी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
6: किन्नुस अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

0: पर्यटक नगरी पोखरा में मेट्रो सिटी हॉस्पिटल प्रणाली सृजनाचोक पोखरा विभिन्न किसिम का विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा को उपचार लिया जानकारी कराद
1: हमारा सेवा
0: हार्ट जोड़ने नशा तथा मेरुदंड रोग
1: जनरल सर्जरी सब प्रकार का ऑपरेशन सेवा
0: मृगौला तथा मूत्र रोग यूरो सर्जरी
1: पेट छाती मुटु थायराइड तथा मधुमेह रोग
0: न्यूरो सर्जरी सेवा
1: बाल रोग
0: नाक कान तथा घाटी रोग
1: मानसिक तथा स्नायु रोग
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग
1: छाला यौन तथा कुष्ठ रोग
0: नेत्र रोग
1: दाँत तथा मुख रोग
0: क्यान्सर रोग दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशनहरू अत्याधुनिक माइक्रो डिभाइडर प्रविधि द्वारा नाक कान तथा घाटी रोग को अपरेशन मासिक नियमित खोप सेवा
1: 24 घंटा एम्बुलेंस इमर्जेन्सी अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा
0: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा
1: डिजिटल एक्सरे
0: सिटी स्कैन सेवा
1: भिडियो एक्सरे इको कार्डियोग्राफी
0: इंडोस्कोपी ईसीजी ईईजी पीटीए
1: फिजियोथेरापी यूरोफ्लोमेट्री
0: केमोथेरापी
1: सुरक्षित गर्भपतन सेवा
0: होल बॉडी चेकअप हेल्थ पैकेज
1: मेट्रो सिटी हॉस्पिटल प्राली पोखरा 8 सृजना चौक कास्की
0: फोन 061-572-648-549